0: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सभी सुनने वालों को मेरा भी नमस्कार और ममता सिंह जी यानी रेडियो सखी ममता जी को भी बहुत बहुत नमस्कार। कैसी हैं आप?
0: बिल्कुल
1: अच्छी है। तो आज मेरा मन कर रहा है ममता जी, बहुत दिनों बाद हम सखी सहेली के इस मंच पर एकत्रित हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो आज मैं आपकी प्रशंसा करूं।
0: अरे पूछने की क्या जरूरत है, करनी है करिए ना, पूछ कर प्रशंसा क्या करना, अरे कीजिए, खूब जम के कीजिए। प्रशंसा भले किसे नहीं अच्छी लगती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन क्या है कि
0: किसी की तारीफ करने के लिए बहुत बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती मंदाकिनी जी, नहीं पूछने की जरूरत होती है, बस धीरे से प्रशंसा कर दी जाती है। कभी एक छोटी सी प्रशंसा भी दिल को छू जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। प्रशंसा केवल तारीफ नहीं, रिश्तों के बीच की दूरी कम करने वाली एक भाषा है।
0: बिल्कुल, और भाषा जो है पुल का काम करती है। जरा सोचिए मंदाकिनी जी, अगर दो पीढ़ियों के बीच संवाद में शिकायतों की जगह थोड़ी सी प्रशंसा आ जाए तो शायद ये जनरेशन गैप भी कुछ कम हो जाए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर साड़ियों का संसार भी कुछ ऐसा ही है

0: कोई आपकी साड़ी देखकर बस इतना कह दे, अरे वाह ममता जी आज तो बहुत सुंदर साड़ी पहनी है आपने और आप पर बात फब भी रही है, तो मन में एक छोटी सी खुशी उतर आती है ना?
1: बिल्कुल, अगर माँ अपनी बेटी से कह दे कि आज बहुत अच्छी लग रही हो, बेटी अपनी माँ से कह दे कि बहुत अच्छी लग रही है और माँ तारीफ कर दे शाबाश बहुत बढ़िया काम किया, तो ये कैसा संवाद है कि लोगों को जोड़ता है। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मना रहे हैं तो उस उन अनुवादकों को थोड़ी सी उन अनुवादकों की थोड़ी सी प्रशंसा हम कर देते हैं जो एक भाषा के भाव को दूसरी भाषा तक बड़े ही सुंदरता से पहुंचा देते हैं।
0: बिल्कुल, तो आइए सखी सहेली में बात करते हैं प्रशंसा की जो हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी के जरिए लिखेंगे। और हाँ, बातों ही बातों में ममता जी हमने समझा दिया है आज के विषय क्या है।
1: बिल्कुल, तो चलिए एक बार दोहरा भी देते हैं अपने श्रोताओं के लिए कि जो हम जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो है पीढ़ियों में अंतर और जो शब्द देते हैं हम श्रोताओं को वो आज प्रशंसा। अब तो स्पष्ट हो ही गया होगा। और साड़ियों का संसार है जिसमें हम बोबगाई साड़ी की बारे की चर्चा करेंगे और भाषाओं के बीच एक पुल जो आज अनुवाद दिवस के मौके पर। तो हमारे श्रोता बताएं कि वो जब किसी रचना को अनुदित रचना जब पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा लगता है, खासतौर से कि कोई मूल रचना पढ़ी है, मान लीजिए बंगला साहित्य का साहित्य बड़ा समृद्ध है और वहां से जब हिंदी में अनुदित कहानी या उपन्यास पढ़ते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है।
0: और इसके अलावा ममता जी वो ये भी बता सकते हैं कि अगर आप भी साहित्यकार हैं तो क्या अनुवाद किया आपने कभी। कई बार हमारे श्रोता जो हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, हो सकता है कि वो भी कोई अनुवादक के रूप में काम कर रहे हो तो उसका जिक्र भी कर सकते हैं
1: जी। और कौन सी किताब अनुवाद की है और साथ में ये भी कि कई भाषाओं में अंग्रेजी से हिंदी, और यही बात फिल्मों में भी तो लागू होती है। जब हम कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो जब वो अनुदित फिल्म होती है हिंदी में डब की हुई तो थोड़ा सा अलग लगता है क्योंकि वो लिप सिंक होता है, तो वो तो एक अलग ही विषय। तो अनुवाद के बारे में चर्चा होगी, हमारे श्रोता भी इसमें शामिल हो। और फिलहाल क्या करें,
0: फिलहाल ये भी बता दें कि सूजी के व्यंजन भी हम बनाने वाले हैं।
1: आप बनाएंगे ना?
0: मैं बनाऊंगी और आप खाएंगी।
1: सारे श्रोता मिलके खाएंगे। चलिए फिलहाल गाने का स्वाद लेते हैं।

0: भाई प्यार के बहुत सारे बहाने होते हैं। प्यार तो आपने बोला कि प्रशंसा कर दूं तो मोहब्बत बढ़ जाती है। हाँ, कोई छोटा सा तोहफा दे देता है तो मोहब्बत बढ़ जाती है। और किन बातों से मोहब्बत बढ़ती है बताइए ना।
1: अरे आप तो मेरी परीक्षा ले रही है, इसका मतलब है ना जिसने मोहब्बत की है वो ज्यादा अच्छा बता सकता है कि मोहब्बत किन किन कारणों से हो पाती है।
0: मोहब्बत किसके दिल में नहीं है भला बताइए। यहाँ इंसान नहीं बल्कि पशु पक्षी भी मोहब्बत से भरे पड़े होते, वो भी आपस में करने का अलग तरीका होता है। हाँ? तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर कोई छोटा सा तोहफा दे दे तो प्यार बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, जैसे कि आप मुझे साड़ी देंगी तो आपके प्रति मेरा प्यार बढ़ जाएगा।
0: ओ, आपने तो पूरे देश को बता दिया।
1: आप मुझे बोंका ही साड़ी देने वाली हैं ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो जैसे ही वो साड़ी मुझे मिलेगी मेरे अंदर एक मोहब्बत का जो अंकुर है वो फूटने लगेगा।
0: अच्छा,
1: आपकी प्रति
0: मतलब इसके पहले आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती हैं?
1: थोड़ी सी कम।
0: मतलब साड़ी खरीदनी पड़ेगी मुझे।
1: हाँ, ठीक है। और उसके बाद मेरी प्रशंसा भी करनी पड़ेगी।
0: ओहो, हाँ, जब पहन के आएंगी तब, तब तो ठीक है, प्रशंसा हम अभी से किए दे रहे हैं। मंदाकिनी जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन ये प्रशंसा झूठी हो जाती है ना।
1: बिल्कुल, जब मैं पहन के आऊंगी साड़ी और आप मेरी प्रशंसा करेंगी उस वक्त जो होगा वो अच्छा लगेगा। फिलहाल हमारे जो श्रोता है खासतौर से हमारी बहनें जानना चाहती हैं कि कौन सी है ये बुमकाई साड़ी, कैसी होती है, तो बताइए उन्हें।
0: देखिए, उड़ीसा की समृद्ध हथकरघा परंपरा की एक बेहद खूबसूरत पहचान है बुमकाई साड़ी। बुमकाई साड़ी का नाम उड़ीसा के गंजाम जिले के बुमकाई गांव से जुड़ा हुआ माना जाता है। बाद में ये बुनाई परंपरा उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो गई और आज बुमकाई साड़ी उड़ीसा की पहचान बन गई है और प्रमुख हथकरघा साड़ियों में गिनी जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसकी बुनाई में इकत और अतिरिक्त धागे से बनी सजावटी बुनावट का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। बॉर्डर और पल्लू में महीन ज्यामितीय और पारंपरिक आकृतियां साड़ी को एक अलग स्थान बना देती है। साथ ही बुमकाई साड़ियों में प्रकृति और लोक जीवन से प्रेरित बहुत सारी आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं ममता जी, जैसे मछली और कोई पक्षी है ना, इस तरह से फूल हैं, पत्तियां हैं, शंख हैं, कमल है, मंदिर है और धार्मिक प्रतीकों से जो प्रेरित आकृतियां होती हैं वो इस साड़ी में हमें दिखाई देती हैं।
0: जो और ज्यामितीय डिजाइन भी बनती है और बुमकाई साड़ियों में अक्सर गहरे और चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल, काला, पीला, हरा, नीला, नारंगी और मरून जैसे रंगों का संयोजन बहुत आकर्षक लगता है। वैसे आपको गाढ़े रंग तो बहुत पसंद है।
1: मुझे गाढ़े रंग बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे मैरून और लाल,
0: मतलब दो साड़ी चाहिए आप?
1: नहीं नहीं, लाल और मैरून, हाँ एक ही कलर हो गया ना, काला और मैरून।
0: अच्छा,
1: या नीला और मैरून।

0: तो मतलब ये
1: इस अलग कॉम्बिनेशन वाली।
0: अच्छा कॉम्बिनेशन, हम तो डरे कि दो अलग अलग साड़ियां आपको देनी होंगी। वैसे कई साड़ियों में मंदाकिनी जी गहरे रंग की मुख्य पृष्ठभूमि के साथ चमकीला बॉर्डर भी होता है और उसका पल्लू भी बनाया जाता है चमकीला। यही विरोधाभासी रंग संयोजन बोमकई को दूर से ही पहचानने योग्य बना देता है।
1: हाँ, और बोमकई साड़ी का जो पल्लू है वो इसकी सबसे खास विशेषताओं में से एक होता है। पल्लू में छोटे छोटे पारंपरिक डिजाइन के बेहद बारीकी से उन्हें बुना भी जाता है। और बोमकई जो साड़ी है मुख्यतः कॉटन है, सिल्क है, दोनों प्रकार से तैयार की जाती है। मैं आपसे सिल्क वाली साड़ी लेना पसंद करूंगी।
0: ओह, तो बड़ी महंगी होती है।
1: कोई बात नहीं।
0: कॉटन बोमकई हल्की आरामदायक और दैनिक पहनावे के लिए बड़ी उपयुक्त होती है, जबकि सिल्क बोमकई ज्यादा भव्य दिखाई देती है और त्योहारों, पारिवारिक समारोहों और विशेष अवसरों पर ये पहनी जाती है। और बोमकई साड़ी की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इसमें केवल सौंदर्य नहीं बल्कि उड़ीसा की सांस्कृतिक स्मृतियां भी बुनी हुई हैं।
1: हाँ बिल्कुल, और इसके डिजाइन स्थानीय प्रकृति, लोक जीवन, धार्मिक परंपराओं और आसपास के वातावरण से प्रेरणा लेते हैं। इसीलिए एक बोमकई साड़ी को केवल कपड़ा नहीं बल्कि बुनकर की कल्पना और संस्कृति का दस्तावेज भी कहा जा सकता है।
0: बिल्कुल सही जानकारी आपने दी है। और एक सुंदर बोमकई साड़ी के पीछे बुनकर की लंबी मेहनत होती है। धागे का चयन होता है, रंगों की योजना, बॉर्डर और पल्लू का पैटर्न और करघे पर इसकी बुनाई की जाती है।
1: बिल्कुल, और हर चरण में जो चरण होते हैं अलग अलग, उसमें बहुत ही धैर्य से ये साड़ी बनाते हैं, बहुत ही कौशलता के साथ साड़ी बनाई जाती है। और हर करघे पर तैयार होने के कारण हर साड़ी में बुनकर के हाथों की एक अलग पहचान भी दिखाई देती है ममता जी।
0: और आज बोमकई साड़ी ने पारंपरिक रूप के साथ साथ आधुनिक फैशन में भी अपनी जगह बना ली है। डिजाइनरों ने इसके पारंपरिक डिजाइन और रंगों को आधुनिक परिधानों में भी इस्तेमाल किया है।
1: हाँ, और तो और आप अगर साड़ी नहीं लेना भी चाहते तो उसके दुपट्टे भी ले सकते हैं। बोमकई के दुपट्टे मिल रहे हैं, स्टॉल मिल रहे हैं, कुर्ते मिल रहे हैं और अन्य वस्त्र भी बनाए जाते हैं। और इस तरह पारंपरिक बुनाई नई पीढ़ी तक भी आज पहुंच रही है।
0: बिल्कुल, और इस साड़ी में धागे केवल कपड़ा नहीं बुनते, वे उड़ीसा की संस्कृति, प्रकृति और लोक जीवन को भी उकेर देते हैं इसमें। और इसके अलावा उड़ीसा की धरती की सादगी, लोक जीवन के रंग और बुनकरों की कल्पनाशीलता जब करघे पर एक साथ उतरती है तब जन्म लेती है बोमकई। और इसके हरे धागे में परंपरा की जो परंपराएं होती है वो देखने लायक
1: होती है। बहुत ही सुंदर होती है बोमकई साड़ी। और अगर हमारी बहनों में किसी के पास है जो सखियां सुन रही हैं तो उसका जिक्र करें कि उनके पास क्या बोमकई साड़ी है, अगर है तो किस रंग की है, उन्होंने इसे कब कब पहना,
0: और दुपट्टा या स्टोल भी है तो उसका भी जिक्र करें। और इस गाने में भी कोई दुपट्टा ढूंढ सकते हैं।

विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्य। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: तो मंदाकिनी जी आप लगता है कुछ अनुवाद करने लगे अंग्रेजी से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी, क्योंकि वैसे एक बात कहें अनुवाद करने की जरूरत नहीं, आजकल सब कुछ अगर डिजिटल हम ढूंढते हैं तो सब कुछ हिंदी में उपलब्ध है,
1: मिल जाता है।
0: लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना कि अनुवाद दो भाषाओं के बीच, बल्कि दो भाषाओं के बीच ही नहीं बल्कि संस्कृतियों दो संवेदनाओं और दो संसारों के बीच पुल का काम करता है, और एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा के पाठक तक उसी भाव और अर्थ के साथ पहुंचाने का काम भी करता है, इसीलिए अनुवादक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है।
1: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि आप साहित्यकार हैं आपको पता है कि जब आप अपनी किताब लिखती हैं और उसके बाद कोई और साहित्यकार या आलोचक या अनुवादक आपसे आपकी किताब मांगता है और आपकी किताब को अन्य भाषा में जब अनुदित करता है तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि हर भाषा अपने भीतर एक संस्कृति, एक इतिहास और भावनाओं की पूरी दुनिया समेटे होती है, लेकिन अलग अलग भाषाओं के बीच संवाद संभव बनाता है ये अनुवाद, और इसीलिए आज का ये खास दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
0: तभी तो कहा जाता है ना कि अनुवाद भाषाओं के बीच बना वो पुल है जिस पर शब्द एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं और अपने साथ भाव, विचार और संस्कृति को भी लिए चलते हैं। और आपको बताऊं मंदाकिनी जी कि जाने माने गीतकार गुलजार साहब अक्सर कहते हैं कि जब कोई किसी किताब का अनुवाद किया जाता है तो जैसे इत्र की शीशी को इत्र की शीशी से इत्र दूसरी शीशी में जब डालते हैं पलटते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा इत्र उस शीशी में रह जाता है। तो जो अनुवाद किया जाता है तो जो भाषा की अहमियत है वो जो संवेदनाएं हैं थोड़ी ना थोड़ी उसमें छूट जाती
1: छूट जाती है।
0: लेकिन फिर भी जब हम अनुवाद करते हैं तो ना पढ़ने से अच्छा होता है कि अनुवादित चीजों को, अनुदित चीजों को पढ़ा जाए, और हम उसमें मीन मेक निकालते रहे कि अरे इसमें तो वैसा लिखा है और यहाँ पर अनुवाद उसने ऐसा किया है।
1: हम क्या करते हैं
0: भावों को
1: अनुवाद के बाद भी हम आलोचना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अच्छा अनुवाद वो है जिसमें भाषा बदल जाती है लेकिन भाव नहीं बदलता। तो कविताएं हो, कहानियां हो, उपन्यास हो, वैज्ञानिक ज्ञान विचार हो, जब अनुवाद के माध्यम से सीमाएं पार करते हैं तो दुनिया थोड़ी सी करीब आ जाती है, और साथ ही भारत जो हमारा देश है यहाँ पर अनुवाद की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ममता जी, हिंदी की बात करें, तमिल है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, असमिया है, उर्दू है, कन्नड़ है, मलयालम है, और अनेक भारतीय भाषाओं का साहित्य अनुवाद के माध्यम से एक दूसरे के करीब आता है, और एक भाषा का साहित्य दूसरी भाषा के साथ पाठकों तक पहुंचता है, और हमारी विविधता के बीच एक साझा सांस्कृतिक जो रिश्ता हमारा बनता भी है।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना ज्यादा पसंद करते हैं। अनुवाद

हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है। अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अनुवाद के बारे में ये गाना क्या कहता है जरा सुनते हैं।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार प्रभांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती। तो भाई 3 अक्टूबर जश्न का दिन हो।

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: तो भाई 3 अक्टूबर को सब तैयार रहें।
5: हाँ,
0: हमें भी इंतजार है, हमारे श्रोताओं को भी इंतजार है और हमें इंतजार है कि आप मोबाइल में जो देख रही हैं
5: क्या पढ़ने वाली हूँ। लेकिन हाँ, मैं इससे पहले 3 अक्टूबर की बात भी कहना चाहूंगी ममता जी कि हमारे श्रोता तैयार रहे हैं। दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 4 बजे तक लगातार वो कार्यक्रम जो लगातार लाइव ब्रॉडकास्ट होगा उसे सुनना नहीं भूलें और अपने विचार लिखना नहीं भूलें।
0: मतलब सारे काम मुलतवी करके 11 बजे से लेकर 4 बजे तक विविध भारती के रेडियो सेट के पास बैठ जाएं और विविध भारती सुनते रहें।
5: सुनना और लाइव ब्रॉडकास्ट देखना है भाई।
0: बिल्कुल,
5: हम लाइव होंगे ना
0: जी, फेसबुक लाइव करेंगे।
5: बिल्कुल।
0: अभी आप जो पढ़ने वाली थी,
5: वो ये पढ़ना चाह रही थी कि अनुवाद पर जब हम बात कर रहे थे, हमारे श्रोता कहते हैं कि अनुवाद करना उन्होंने भी सीखा था परंतु उसका ज्यादा उपयोग नहीं कर पाए। पर हम उन लोगों को, उन अनुवादकों को बहुत बहुत सम्मान करते हैं जिन्होंने अलग अलग भाषाओं के ग्रंथों को, कहानियों को, उपन्यासों को दूसरी भाषा में अनुवाद करके हम लोगों तक पहुँचाया है। अनुवाद करने से हर भाषा का ज्ञान हर अलग अलग भाषा भाषियों को हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी सराहनीय बात है।
0: मंदाकिनी जी, आजकल एक श्रोता और लिख रहे हैं कि आजकल फिल्मों में सब टाइटल स्क्रीन पर चलते हैं जिससे समझने में बड़ी आसानी होती है। मैं अलग अलग राज्यों की स्थानीय भाषाओं में बनी फिल्मों को, खासकर साउथ की फिल्मों, हॉलीवुड की फिल्मों और कोरियन टीवी सीरियल्स को सब टाइटल्स के साथ देखता हूँ।
5: ये होता है, बहुत अच्छा भी लगता है जब हम उन अनुदित फिल्मों को देखते हैं तो मजा भी आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनुवाद किसी भी नई भाषा को पूर्ण रूप से समझने के लिए बहुत जरूरी होता है और सभी लोग अपनी मातृभाषा में संवाद करना पसंद करते हैं और अनुवाद हमें उस नई भाषा को अच्छे से समझने में मदद करता है। अनुवाद न केवल भाषा की समझ को बढ़ाता है बल्कि हमें आपस में जोड़कर एक दूसरे की संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।
0: और एक बात और है, एक भाषा का साहित्य दूसरी भारतीय भाषा में पहुंचने से पढ़ने वालों का संसार भी व्यापक होता है। अब मिसाल के तौर पर मान लीजिए किसी एक का साहित्य हिंदी पाठकों तक, हिंदी का साहित्य अन्य पाठकों तक अनुवाद के माध्यम से पहुंच सकता है तो कितनी अच्छी बात है। आज जहाँ पर मशीनों के द्वारा, मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांसलेशंस किए जा रहे हैं एआई के जरिए और डिजिटल अनुवाद उपकरणों ने अनुवाद को काफ़ी समृद्ध बना दिया है और तेज़ी भी आ गई है। साहित्यिक, कानूनी, सांस्कृतिक और संवेदनशील सामग्री में जो मानव अनुवादक की भूमिका अभी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार एआई के माध्यम से जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ गलतियां भी होती
5: हो जाती हैं, वो जो फीलिंग्स हैं वो खत्म हो जाती हैं, अनुवाद हो जाता है।
0: कई बार उपयुक्त शब्द की बजाय कुछ और शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है।

0: मंदाकिनी जी, जब आपसे आपसे छोटे मतलब आपसे आगे की पीढ़ी की कोई कोई नौजवान, कोई लड़की या कोई लड़का आपसे कुछ पूछता है, अरे आंटी आपको इतनी समझ नहीं है, अब जमाना बदल गया है, तो आपको कैसा लगता है?
1: सच बताऊं तो मुझे हंसी आती है उनकी मासूमियत पर, उनके भोलेपन पर। और होता है घर में जो हमारे बच्चे हैं या हमारे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, वो अक्सर कहते हैं अरे आपको इतना भी नहीं पता, अरे ऐसा नहीं होता है, अब कितना कुछ बदल गया है, आप नहीं जानते ऐसा होता है।
0: आप ओल्ड जनरेशन हो, जबकि बहुत बड़ा फासला नहीं है दो पीढ़ियों के बीच, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। तो दरअसल जो जनरेशन गैप है, ये पीढ़ियों के बीच बढ़ती सोच की दूरी भी है।
1: बिल्कुल सही कहा। और हर पीढ़ी क्या है ममता जी, अपने साथ एक नया समय लेकर आती है और उनके सोचने का ढंग बिल्कुल अलग होता है, पसंद नापसंद, उनकी दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। और यही अंतर जब समझ की कमी और संवाद की दूरी में बदल जाता है तो हम पीढ़ी अंतराल पर आ जाते हैं, यानी जनरेशन गैप की बात हम करते हैं।
0: बिल्कुल। और एक ही परिवार में रहने वाले माता पिता बच्चे कई बार एक दूसरे से तो प्रेम बहुत करते हैं, फिर भी उनकी सोच में इतना फासला होता है कि छोटी सी बात पर बहस छिड़ जाती है और वो समझ नहीं पाते कि ये

0: बहस कहाँ से कहाँ चली जाएगी। समय के साथ जब समाज तेजी से बदल रहा है, आज की पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और आधुनिक शिक्षा के वातावरण में बड़ी हो रही है, तो ऐसे में जानकारी पाने के साधन पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। दूसरी तरफ पिछली पीढ़ियों ने सीमित साधनों और ज्यादा पारंपरिक वातावरण में जीवन बिताया है, तो ये स्वाभाविक है दो पीढ़ियों के बीच का
1: अंतराल होगा। लेकिन माता पिता को लगता है, ममता जी, कि आज के बच्चे बहुत जल्दी बदल रहे हैं, जबकि नई पीढ़ी की अगर हम बात करें तो उन्हें लगता है कि उनकी बड़े लोग जो है उनकी बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह सही होते हैं, फर्क केवल समय का है। और जिन परिस्थितियों में एक पीढ़ी बड़ी हुई, दूसरी पीढ़ी उन्हीं परिस्थितियों में बड़ी नहीं हुई। जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत पुरानी पीढ़ी जो है बहुत ही पारंपरिक तरीके से बड़ी हुई, लेकिन जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो बहुत ही कहते हैं ना मॉडर्न तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो तकनीक और तेज बदलावों के बीच बड़ी हो रही है, और इसके लिए मोबाइल की बात करें, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, ये उनके जीवन का एक आम हिस्सा हो गई है। और वहीं पिछली पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है, वहां पर रिश्तों को चिट्ठियों से, मुलाकातों से और आमने सामने की बातचीत के जरिए सींचा जाता है। तो दोनों अनुभव अलग है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक सही है या दूसरा गलत है, पर हमारे सोचने का ढंग ऐसा हो जाता है कि हमारे बच्चे गलत हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। दरअसल दोनों पीढ़ियों के अनुभव अलग अलग हैं। बुजुर्गों के लिए जो बात अनुशासन और संस्कार की होती है, वहीं युवा पीढ़ी के लिए वो रोक टोक वाली होती है। उन्हें लगता है कि अरे नाहक रोक टोक कर रही हैं आप, हर चीज पे आप रोक लगाती हैं, मुझे तो ऐसा करना चाहिए, थोड़ी आजादी चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, ये होता है। और पहले के जीवन में जो स्थिरता थी, सुरक्षा को लेकर ज्यादा महत्व दिया जाता था, अच्छी पढ़ाई हो, स्थायी नौकरी मिले और विवाह में स्थायित्व हो, मतलब लंबे समय तक जीवन टिके एक दूसरे का, और परिवार को जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां माना जाता था। लेकिन अब लोगों की सोच, लोगों की विचारधारा बदल गई है कि हमें खुद क्या करना है वो हम तय करेंगे। पहले माता पिता बड़े बुजुर्ग तय करते थे।
1: बिल्कुल।
0: अब देखा जाए तो उनकी सोच भी गलत नहीं है। युवा पीढ़ी को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक समय था कि बड़े तय कर देते थे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, कहाँ जाना है, नौकरी करनी है कि नहीं, शादी कब करनी है,
1: ये और वही विवाह तय कर लेते थे माता पिता, और लड़की हो या लड़का बहुत ही सहज स्वीकार भी कर लेते थे रिश्ते को। अब क्या हो गया है ममता जी, कई जो बुजुर्ग है वो महसूस करते हैं कि आज के बच्चे पहले की तरह परिवार के साथ समय नहीं बिताते, उनकी बातें नहीं सुनते और जल्दी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो इसके पीछे क्या है कि बदलती हुई जीवन शैली भी जिम्मेदार है, क्योंकि पढ़ाई है, नौकरी है, प्रतिस्पर्धा, गला काट प्रतियोगिता फैली हुई है, और डिजिटल दुनिया ने युवाओं की जो दिनचर्या है, हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, उसकी दिनचर्या को बिल्कुल बदल दिया है। इसलिए हर बदलाव को संस्कारों की कमी मानना ये उचित नहीं है कि नई पीढ़ी में संस्कार नहीं है, हम तो बहुत संस्कारित थे। इस तरह की बात जो हम करते हैं ना, वो पीढ़ी अंतराल को बढ़ाती ही है।
0: समय भी प्रतिस्पर्धा का हो गया है। पहले समय आसान था, जिंदगी आसान थी, अब उतनी आसानी नहीं रही। आज के युवा अपने करियर में नए नए विकल्प तलाशना चाहते हैं। वे नौकरी के साथ साथ स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, कला, खेल, डिजिटल मीडिया और दूसरे नए क्षेत्रों में भी करियर अपना आजमाना चाहते हैं। यहीं से कई बार मतभेद शुरू हो जाते हैं और माता पिता और दादी दादा, खासतौर से नानी नाना में लंबा गैप होता है, तो उनका ये कहना होता है, अरे भाई यहीं पर हमारे नजरों के सामने रहो तो ठीक रहेगा, लेकिन बच्चों की सोच है कि हमें अच्छा करना
1: चाहिए, वो बाहर जाएं, देश में जाएं, विदेश में जाएं। हमारे समय में क्या होता था कि पढ़ लिया, आपने एमए कर लिया, बीएड कर लो, टीचर बन जाओ या एलडीसी का एग्जाम देकर क्लर्क बन जाओ, और लेकिन रहो इसी शहर में आसपास, तो हम मान लेते थे उस बात को। लेकिन आज के बच्चों के सामने बहुत बड़ा संसार है, वो उसमें जीना चाहते हैं और हमें उन्हें जीने देना चाहिए।
0: बातें कितनी भी कर लीजिए, रहिए इर्द गिर्द गीत के साथ, सुनते हैं ये गाना।

0: बिल्कुल सही कहा, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, और आपका साथ मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ममता जी।
1: मुझे भी आपका साथ बहुत प्यारा लग रहा है, ये तो प्रशंसा की बात हो गई, लेकिन हम इस पर अभी थोड़ी देर बाद आते हैं। पहले एक जरूरी बात अपने सखियों से खास तौर से साझा कर ले, सखाओं से भी।
0: बिल्कुल,
1: दरअसल रफ्तार जब हौसलों से मिलती है तो इतिहास रच उठता है, और कल एशियन गेम्स के ट्रैक पर भारत की चार बेटियों ने यही इतिहास रचा। किरण पाहल, एम आर पूवम्मा, प्राची चौधरी और विद्या रामराज, इन चारों ने ऐसी दौड़ लगाई कि 400 मीटर रिले में ऐसी दौड़ लगाई कि तिरंगा सबसे ऊपर लहराया अपना तिरंगा, और भारत की झोली में आया स्वर्ण पदक। ये सिर्फ 400 मीटर की चार दौड़ नहीं थी, बल्कि ये मेहनत, उम्मीद और हौसले की दौड़ थी। किरण ने शुरुआत की, पूवम्मा ने बढ़त बनाई और प्राची ने उसे संभाला, और आखिरी चरण में विद्या रामराज ने अपनी रफ्तार से भारत का स्वर्ण पक्का कर दिया। तो सलाम करते हैं इन चारों लड़कियों को, गोल्डन गर्ल्स कहलाएं, और जिन्होंने साबित कर दिया कि जब कदमों में जुनून हो तो मंजिल दूर नहीं
0: होती। बिल्कुल सही कहा आपने, और देखिए कि लड़कियां कहां से कहां पहुंच गई। तो हमें अभी जब हम पीढ़ी अंतराल की बात कर रहे थे, वही बात होती कि लड़कियां हैं तुम घर का काम करो, तुम्हें तो आखिर पढ़ लेकर करना क्या है, घर का काम ही तो करना है। ये जो मानसिकता है अब लड़कियों ने बिल्कुल दूर कर दी है। घर का काम अपनी जगह है, लेकिन बाहर की दुनिया में अपना परचम फहराना ये लड़कियों ने सीख लिया है और वो कर भी रही है।
1: ये जो प्रशंसा वाली बात है ना, तो उन लड़कियों की भी प्रशंसा की जानी चाहिए, इन चारों लड़कियों की और देश की उन तमाम लड़कियों की जो अपने जुझारूपन से बहुत कुछ कर रही हैं,
0: बिल्कुल
1: लीक से हट कर रही हैं, जहां पर उन्हें सही वातावरण नहीं मिल रहा है, उचित माहौल नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए, फिर भी अपना परचम लहरा रही हैं। अब हमारी एक सखी है जो कह रही है कि प्रशंसा के कुछ शब्दों में वो ताकत है जो किसी की भी दुनिया बदल सकती है। अगर हम प्रशंसा का अर्थ समझें तो हर दिन हर पल की प्रशंसा करनी चाहिए जो हमें जीने का अवसर देती है। प्रशंसा के कुछ बोल निराशा में बड़ी आशा का काम करते हैं, मगर एक सच और है, अक्सर हम दूसरे की प्रशंसा नहीं कर पाते क्योंकि हम मन ही मन उसकी तुलना स्वयं से करने लगते हैं। मगर जब मन को कुछ अच्छा लगे तो उसे जाहिर कर देना चाहिए, कोई चीज दिल को छू जाए तो उसकी प्रशंसा जरूर करें।
0: बिल्कुल सही कहा, एक सखी ने लिखा है कि अगर प्रशंसा की बात करें तो किसे अच्छी नहीं लगती। रेडियो सखी ममता जी और मंदाकिनी जी द्वारा हर प्रोग्राम की प्रस्तुति प्रशंसा करने लायक होती है, फिर वो सुरीला सफर हो, सखी सहेली हो या छाया गीत, हम उनके प्रति माया हो ही जाती है। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने विविध भारती चैनल बनाया। अगली 3 अक्टूबर के दिन विविध भारती का जन्मदिन जो आ रहा है, हम सभी अग्रिम बधाइयां दे रहे हैं।
1: क्या बात है, शुक्रिया। और एक सखी ने लिखा, एक श्रोता ने लिखा है, तारीफ वही अच्छी लगती है जिसमें दिखावा नहीं बल्कि दिल से निकली सच्चाई हो, और सच्ची तारीफ से अपनापन बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी कार्य में प्रशंसा प्राणवायु का काम करती है, किसी के अच्छे काम या गुणों की सच्ची पहचान यानी प्रशंसा बहुत अच्छी बात है। खूबी, सुंदरता, महिमा कह देना, स्तुति कर देना, गुणों का बार बार बयान करना यानी गुणगान करना, इसके अलावा बधाई या अभिनंदन में भी स्तुति की छटा दिखाई देती है। आत्मविश्वास, मनोबल और सकारात्मक व्यवहार को अच्छी प्रेरणा मिलती है प्रशंसा से, और आपसी संबंध बेहतर बन जाते हैं।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि शब्द हमारे हैं लेकिन जब आपके विचारों से जुड़ते हैं तो उनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। आपकी प्रशंसा हमारे लिए हौसला है और प्यार से मिले शब्द हमेशा दिल में रह जाते हैं।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि प्रशंसा जहां जरूरत होती है वहां जरूर करनी चाहिए। प्रशंसा के लायक कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। गुण, कार्य, व्यवहार देखकर प्रशंसा की जाती है। हमारे घर में कोई भी सदस्य अगर इसका पात्र होता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, और मैं तो करता हूँ जरूर प्रशंसा।
1: अब कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। कई बार जब प्रशंसा चापलूसी का रूप ले ले तो प्रशंसा नहीं होती है बल्कि वो चापलूसी कहलाती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अब हम सुन लेते हैं एक गीत ममता जी।

0: गाने की प्रशंसा करने वाली हैं क्या?
1: बहुत
0: ये वो गाने हैं हाँ। जो आपके दिल में निवास करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और किसी की प्रशंसा भी हमारे दिल में बैठ जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, प्रशंसा बड़ा नवीन और रोचक मुद्दा है। तो ये भी तो प्रशंसा हुई हाँ। हमारे लिए हाँ। प्रशंसा के लिए किसी के कहने की जरूरत नहीं होती। कोई शो लगा दीजिए तो अपने आप प्रसन्न हो गया मन और हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं कि अरे तुमने हमारे लिए लगा दिया। हमारी नानी दीदी को नानी दादी को मारवाड़ी सास बहू का शो देखकर मजा आता था। हमें तो और भी कुछ शोज के नाम लिखे जो टेलीविजन पर इन्होंने देखे कि वो हमें बड़ा अच्छा लगता था और जब कोई लगा देता था तो हम उसकी प्रशंसा करते थे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। और प्रशंसा तब भी की जाती है ममता जी जब हम कोई अच्छा व्यंजन बनाते हैं। जैसे कि मैं सूजी के व्यंजन बनाऊंगी आप खाएंगी तो निश्चित रूप से मेरी प्रशंसा करेंगी।
0: तो पहले तारीफ कर दे, बहुत अच्छा सूजी का व्यंजन आपने बनाया है, सूजी का हलवा बनाने वाली है या उपमा या फिर कुछ डोसा।
1: बहुत सारी चीजें हमारे जो सखियों ने भेजी हैं हम उनको देखते हैं क्या क्या बनवाती हैं वो हमसे। देखिए एक लिखते हैं कि सूजी का बहुत ही आसान व्यंजन है लौकी के चिल्ले जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इसके लिए आपको हरी मिर्च लौकी पानी आवश्यकता अनुसार लेना होता है और सूजी को बहुत कम पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दें थक कर फिर उसको रख दें। तब तक लौकी को कद्दूकस कर लें और अच्छे से धो के उसका पानी बिल्कुल अलग करके सूजी में मिला दें और हरी मिर्च भी डाल दें। साथ ही मसाले नमक अजवाइन ऑर्गिनो जो भी उपलब्ध हो सबको मिक्स करके लोहे के तवे पर फैलाकर बहुत हल्के घी में चिल्ले को सेक लें। सेकते समय चिल्ले को उतारने से पहले उसको थोड़ा सा पलटे दबा दें जिससे वो सॉफ्ट बन जाते हैं। इसमें बहुत कम घी और समय भी बहुत कम लगता है।
0: और अब घड़ी की ओर देखिए कि बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम और कुछ कोई रेसिपी बताएं या कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली एक विलक्षण गायक
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है संगीत की गहराई है भावों में मिठास है
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम
0: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।